0: More music now on YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Tú puedes ser un héroe al estar preparado para una emergencia. Primero, prepara un plan. Reúne a tu familia para planificar formas de cómo comunicarte con tus seres queridos después de una emergencia o planear una ruta de escape.
2: ¡Baymax!
3: I am not fast.
1: Prepara un equipo de suministros. En caso de una emergencia, es importante contar con suficientes alimentos para 3 días. Y no te olvides de las pilas.
3: Go battery.
1: Visita ready.gov/niños para obtener más información. Patrocinado por FEMA y The Ad Council.
4: Hi, my name is Larry Eaton, and I'm hosting a new show called Fireside Chats with Mr. Eaton. The show will be dealing with issues surrounding veterans, but also for all students and their educational endeavors. Please tune in to ycradio.org every second and fourth Tuesday of the month. I look forward to speaking to you all on ycradio.org, the voice of today's generation.
5: Dhoka dhadi chetavani. Apna khyuni login password ya MAF. A. कभी साझा न करें। कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने पासवर्ड या MF। ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF ए अनुरोध का उत्तर न दे। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
6: Are you looking for a tutor? Do you need to brush up on your research or speaking skills? Perhaps you just want to boost your confidence. Well, York College Collaborative Learning Center offers free tutoring in person and online in room AC1C18. Meet with the tutor at york.cuny.edu/clc or contact them at email clc@york.cuny.edu. Call them at 718-262-2303 or 718-262-2494. Again, meet with them in person or online. Meet with the tutor at york.cuny.edu/clc or contact them via email at clc@york.cuny.edu. Call them at 718-262-2303 or 718-262-2494. This is brought to you by York College Collaborative Learning.
7: Yo, what up, New York? You are now rocking with Matt Brevner and tuning in to YCRadio.org, the voice of today's generation. Be sharp.

0: Thank you for listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Tú puedes ser un héroe al estar preparado para una emergencia. Primero, prepara un plan. Reúne a tu familia para planificar formas de cómo comunicarte con tus seres queridos después de una emergencia o planear una ruta de escape.
2: ¡Baymax!
3: I am not fast.
1: Prepara un equipo de suministros. En caso de una emergencia, es importante contar con suficientes alimentos para 3 días. Y no te olvides de las pilas.
3: Go battery.
1: Visita ready.gov/niños para obtener más información. Patrocinado por FEMA y the Ad Council.
4: Hello, everyone. I'm here to tell you all about your college's Male Initiative Program, where all are welcome to come together in strengthening our purpose. The goal of this program is to contribute to the success of underrepresented populations, particularly male students. We offer programs such as YC Mentoring and workshops such as The Barbershop, where individuals can prosper and excel from. For more information, feel free to come by the office in room 3MO2. You can contact us at 718-262-3772 or email us at www.york.cuny.edu/mencenter. Again, for more information, feel free to come by the office in room 3MO2. You can contact us at 718-262-3772 or email us at www.york.cuny.edu/mencenter. Thank you.
5: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना CUNY लॉगिन पासवर्ड या MAF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. ए. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और CUNY IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए. अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह CUNY की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
6: My name is Alisi Augustine, computer science major. This is YCRadio.org, the voice of today's generation.